श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए अब सुनते हैं रॉकी हैंडसम फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल ने। सचिन पाठक व शेखर अस्तित्व की लिखी रचना है और संगीत दिया है सनी बावरा व इंदर बावरा ने।

श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान के गाए रॉकी हैंडसम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1361वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
2: लिखते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: नोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं,
2: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
2: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
1: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं, ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
2: अजीत जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
1: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है
2: जी।
1: आप कहेंगे ये ठीक भी है, क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
2: श्रोता, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
1: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं
2: जी।
1: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
2: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
1: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है
2: जी।
1: लेकिन ये जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति

0: टी का हिस्सा है।
1: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है, तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
0: जी हाँ श्रोताओ, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था?
1: जी,
0: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओ, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं
1: जी,
0: और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
1: जी हाँ श्रोताओ, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है।
0: जी श्रोताओ, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर,
1: जी
0: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारी आभार के पात्र नहीं हैं? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मशीनों को रिटायर करने की जापान की एक छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है, उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
0: तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है, तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए।
1: जी,
0: क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
1: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
0: जी श्रोताओ, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
1: जी, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: जी, तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकना और उसका उचित स्थान पर निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: CIET NCERT presents the program द स्मार्ट मंकी।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. The monkey had a banana. He peeled the banana and ate it.

0: मेरा नाम साक्षी है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
4: नमस्कार साथियों।
5: मेरा भी नमस्कार।
4: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
5: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
4: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर, जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
5: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
4: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
5: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
4: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
5: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे।

0: तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
1: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
2: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
1: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजा मंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
0: काली बाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी। सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। काली बाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजा मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजा मंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
1: प्रजा मंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजा मंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
0: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
1: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
0: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
1: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
0: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सेंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सेंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
1: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
0: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
3: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूं तुमको, सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
0: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
1: साहब ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
0: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
1: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
0: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
1: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई

0: ढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
1: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
0: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
1: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो?
0: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
1: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
0: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भागकर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
1: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
0: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
1: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
0: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही।
1: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
0: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
1: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
0: कालीबाई, तुम्हें हमारा
1: सलाम।
2: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंक

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1361वीं कड़ी सुन रहे थे।

0: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज दोपहर 1:10 पर समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम होगा, आओ हिल मिल गाए। दोपहर 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, आपके नाम फिल्मी पैगाम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसके तहत आज हम आपको शैलेंद्र सिंह के लिखे गीतों को सुनवाने जा रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत है दिल अपना प्रीत पराई फिल्म से। ये फिल्म 1960 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण S.A. बागर ने किया था। मुख्य भूमिका में थे मीना कुमारी, नादिरा और राजकुमार। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में इस गीत को। गीत लिखा है शैलेंद्र ने।

0: 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम एक ही कलाकार को सजा रहे हैं शैलेंद्र के लिखे कुछ गीतों के साथ। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं दिल तेरा दीवाना फिल्म का गीत। ये फिल्म 1962 में आई थी। मुख्य भूमिकाओं में थे शम्मी कपूर और माला सिन्हा। संगीत शंकर जयकिशन का, गायक है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। ये गाना फिल्म का सबसे यादगार और चंचल गीत है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में पेश है गाइड फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वरों में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है SD बर्मन ने। इस गीत में प्रेम की मस्ती, साथ और जीवन के सफर की खूबसूरत भावना दिखाई देती है।

मोहम्मद रफ़ी की स्वर में श्रोताओं, अभी आप एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गाना सुन रहे थे। शंकर जयकिशन का संगीत था और गीत लिखा था शैलेंद्र ने। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में आई मिलन की बेला फिल्म का गीत, संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, ये गीत प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो जाने की भावना को बहुत खूबसूरती से व्यक्त करता है।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमरीका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमरीका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम राउंड के साथ वार्ता की। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि

पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अधिक विविध, संतुलित और सतत व्यापारिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक हुई। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,066 पर, जबकि सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 76,993 पर काम कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Nepal as rescuers race against time to search for the missing and rescue those stranded. Meanwhile, at least 933 workers are believed to be trapped at around half a dozen hydropower projects. Rescue teams backed by India and other experts are searching around the hydropower tunnels, including Trishuli 3A. In Tibet, the death toll currently stands at 16, with 546 reported to be missing. Following the severe flooding in Nepal and heavy rainfall in catchment areas, water levels of the Gandak and Kosi rivers have risen in Bihar. To regulate the river flow, all 36 gates of the Valmiki Nagar barrage and 25 of the 56 gates of the Birpur barrage at Kosi have been opened. However, the water levels and discharge from both rivers have declined over the past 24 hours. Benchmark domestic were trading lower in the afternoon session today. The Sensex declined 271 points to 76,993, while the Nifty lost 110 points to 24,066 when reports last came in. And with that, we end the bulletin.
1: Akashvani ka ye Shri Vijayapuram kendr hai. Is samay dopahar ke 1:10 hue hain. Ab prastut hai समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाएं।
2: बच्चों नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा गीत सिखाएंगे। उसके बोल हैं होंगे कामयाब। ये गीत आपने पहले सुना है?
3: यस सर।
2: तो आप सीखेंगे ना?
3: यस सर।
2: अच्छा, पहले हम आपको इस गीत के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये गीत एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश सॉन्ग का हिंदी ट्रांसलेशन है, और वो इंग्लिश सॉन्ग था वी शैल ओवरकम, और ये पॉल रॉबसन ने इसको गा के बहुत मशहूर किया था, और इसका हिंदी अनुवाद किया श्री गिरजा कुमार माथुर ने। तो सबसे पहले आप इसके बोल लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल खोलिए। होंगे कामयाब, दूसरी बार फिर लिखिए, होंगे कामयाब, और तीसरी बार हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास,
3: हो मन में है विश्वास,
2: पूरा है विश्वास,
3: पूरा है विश्वास,
2: हम होंगे कामयाब एक दिन,
3: हम होंगे कामयाब एक दिन।
2: तो बच्चों ये तो स्थाई हो गई। अब पहला अंतरा लिखिए, होगी शांति चारों ओर,
3: होगी शांति चारों ओर,
2: और दूसरी बार फिर आएगा, होगी शांति चारों ओर,
3: होगी शांति चारों ओर,
2: और तीसरी बार, होगी शांति चारों ओर एक दिन,
3: होगी
2: हो मन में है विश्वास,
3: हो मन में है विश्वास,
2: पूरा है विश्वास,
3: पूरा है विश्वास,
2: होगी शांति चारों ओर एक दिन,
3: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
2: अब दूसरा अंतरा लिखिए, हम चलेंगे साथ साथ,
3: हम चलेंगे साथ साथ,
2: डाल हाथों में हाथ,
3: डाल हाथों में हाथ,
2: हम
3: चलेंगे साथ साथ एक दिन,
2: हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास।

0: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
1: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
0: अब तीसरा अंतरा लिखिए, नहीं डर किसी का आज।
1: नहीं डर किसी का आज।
0: नहीं भय किसी का आज। नहीं डर किसी का आज के दिन।
1: नहीं डर किसी का आज के दिन।
0: हो मन में है विश्वास।
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास।
1: पूरा है विश्वास।
0: नहीं डर किसी का आज के दिन। और इसके बाद होंगे कामयाब आ जाएगा। तो लफ्ज लिख लिए ना आप सबने?
1: यस सर।
0: अच्छा, इसकी धुन जो है वो कहरवा ताल में है और इसमें चार मात्रा होती हैं। देखिए कैसे। धागी नाते नक दिन, एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार,
0: एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार।
0: और अब इसकी बोल बांट देख लीजिए, इसकी बोल बांट कैसे है।

0: एक दिन,
1: एक दिन।
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: हम होंगे कामयाब एक दिन,
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: इसी तरह से बच्चों इसके तीनों अंतरों की बोल बांट रहेगी। अब इसको गाने में हम लोग सिखाएंगे। तो नलिनी जी, पहले आप बताइए कि इसकी धुन कौन से स्वर से है।
2: इस गाने की धुन पांचवे काले से है।
0: बच्चों, पांचवे काले से गाना है, कौन से स्वर से?
1: पांचवे काले से।
0: अच्छा, अब सा दीजिए।

0: तो ये तो बच्चों इसकी स्थाई हो गई। अब पहला अंतरा सीखेंगे। पहला अंतरा क्या है इसका जरा बताइए।
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और ये धुन इसकी वही है जो होंगे कामयाब की है, लेकिन इसको सम के दो मात्रा बाद गाना है। कैसे? एक दो तीन चार, एक दो होगी शांति, एक

0: तो बच्चों ये पहला अंतरा हो गया, आप दूसरा अंतरे के बोल बताइए क्या हैं?
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: और ये भी सम के दो मात्रा बाद शुरू होता है। तो नलिनी जी आपसे खाइए एक।

0: तो ये दूसरा अंतर आपको याद हो गया। अब तीसरे अंतरे के बोल बताइए क्या है?
1: नहीं कर किसी का आज।
0: इसकी धुन भी पहले अंतरे के समान है, लेकिन ये दो मात्रा से नहीं शुरू होगा, ये सम के तीन मात्रा बाद शुरू होगा। कैसे? एक दो तीन चार, एक दो तीन नहीं डर, एक दो तीन

तो ये तीसरा अंतरा भी आपको याद हो गया। इसके बाद होंगे कामयाब आपने गाना है और आखिर में तीन बार लाइन रिपीट करनी है, हम बताते हैं कैसे। पहले आप होंगे कामयाब गाइए, 1 2 3 4।

तो ये तो बच्चों गाना आपको याद हो गया। एक बात और है, सबसे शुरू में गाने से पहले थोड़ा सा आलाप करना है और उसकी सरगम है पा धा रे ग, और चार चार मात्रा करना है। हम बताते हैं कैसे।

0: तो ये गाना आपको पूरा याद हो गया?
1: Yes, sir.
0: अब शुरू से आलाप से और आखिर तक पूरा गाना आप गाएंगे। रेडी? 1, 2, 3, 4.

0: तो बच्चों आपने बहुत अच्छा गाया, अब घर जाके इसको खूब प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छी तरह से ये गाना याद हो जाएगा। अच्छा नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: श्रोताओं अभी आप समूह शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाए सुन रहे थे।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 1:30 पर आज सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब पेश है व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।
1: व्हाट्सएप माई चॉइस,
2: व्हाट्सएप
1: माई चॉइस।
0: श्रोता, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कई सारे व्हाट्सएप संदेश हमें आए हुए हैं जिनको आज हम इस कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं। और यदि आप श्रोता भी हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9474234000। और लिख भेजिए अपना नाम, पता और फिल्म का नाम और साथ ही गाने की बोल। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तकदीर फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजा है झारखंड के दादा बाबू रोड गिरिडीह से मोहम्मद नवाज़, साइमा नवाज़, हसन बाबू, मिफ्रा नवाज़, बेबी चाहत और सादिया। तो सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर इस गीत को।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सच्चा झूठा फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को पसंद किया है सादर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक। तो आइए सुनते हैं इन सभी दोस्तों की पसंद पर इस गीत को।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अनजाना फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को पसंद किया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष।

श्रोता, इस वक्त आप आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं व्हाट्सएप आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं अखियों के झरोकों से फिल्म के इस गीत को सुनवाने का अनुरोध किया है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। आइए सुनते हैं इन सभी दोस्तों की पसंद पर अखियों के झरोकों से फिल्म का ये गीत।

श्रद्धा बलमा फिल्म का गीत है। इस गीत को गाया है आशा भोसले और कुमार सानू ने। इस गीत को पसंद किया है बन्नी बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, साथ ही नंदी किशोर, इन्होंने अपना पता नहीं भेजा है और साथ ही इन्होंने बलमा फिल्म के इस गीत के लिए फरमाइश भी भेजा है और उनके साथी। तो चलिए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर बलमा फिल्म का ये गीत।

श्रद्धा बलमा फिल्म का गीत है। इस गीत को गाया है आशा भोसले और कुमार सानू ने। इस गीत को पसंद किया है बन्नी बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, साथ ही नंदी किशोर, इन्होंने अपना पता नहीं भेजा है और साथ ही इन्होंने बलमा फिल्म के इस गीत के लिए फरमाइश भी भेजा है और उनके साथी। तो चलिए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर बलमा फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं पाकीज़ा फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। इस गीत को पसंद किया है तेलंगाना चुट्टुपल से कस्तूरी रामुड़ा, भूमि देव, पृथ्वी और नारायणा।

0: श्रोता, इसी के साथ कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम से अब हम अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: व्हाट्सएप माई चॉइस,
2: व्हाट्सएप
1: माई चॉइस।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: today. Government notifies all six pillars of Semicon India Programme 2.0 with a total outlay of 1.27 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage. Indian Navy commissions INS Nipun, a special designed platform to support wide spectrum of diving and underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people are still missing. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुकुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
3: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुकुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
1: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को

0: वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
1: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन एक के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
3: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपनी मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
3: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित है, उनमें से 85% महिलाएं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
4: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।

0: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर News on AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटांग में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर-20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर-20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371-7117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के

सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज, मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर और इसके आसपास के इलाकों में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। समुद्र काफी अशांत रहेगा। ऐसी स्थिति में मछुआरों को आज से लेकर 2 सितंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। परसों सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:32 और 10 सेकंड हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर।
1: विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

0: नमस्कार दोस्तों, दोपहर की भागदौड़ के बीच आइए कुछ पल अपने लिए निकालिए, कुछ मीठी बातें करिए, कुछ खूबसूरत यादों को ताज़ा करिए और सुनिए ऐसे गीत जो चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक प्यारा सा एहसास छोड़ जाए। तो मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अनीता और आप सुन रहे हैं हेलो डियर फ्रेंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी सारी कामकाज को थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए और जुड़ जाइए इस खूबसूरत संगीतमय सफ़र से। तो आइए देखते हैं आज का पहला कॉलर कौन है। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, मेरी बात जो है शिप्रा दास जी से हो रही है, विंबरलीगंज श्री विजयपुरम।
1: जी मैम।
0: जी शिप्रा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: जी हाँ, मैं भी अच्छी हूँ शिप्रा जी। और बताइएगा, घर पर सब कैसे हैं?
1: घर पे सब ठीक है मैम, बहुत दिनों के बाद, 3 महीने हो गए मैम, सब बात हो रही है आज तो।
0: जी जी,
1: सुबह कॉल आए तो बहुत खुशी हो रही थी कि कहीं मुझे भूल तो नहीं गई, याद है।
0: नहीं नहीं, हम अपने श्रोताओं को जो है कैसे भूल सकते हैं, क्या करें, हमारे इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे श्रोता हैं, उनको बारी बारी से जो है हमें कॉल करना होता है, उनको याद करना होता है। जी शिप्रा जी, बताइए फिर किस तरह से जो है आपका दिनचर्या चल

0: रहा है?
1: मैम अच्छे चल रहे हैं। कल हम लोग का मंदिर में प्रोग्राम था।
0: अच्छा,
1: अभी जन्माष्टमी के लिए हम लोग गेम वगैरह किए, बड़ों का भी था बच्चों का भी था, तो बहुत मजा किए। फिर अच्छा। हम लोग को कुछ तो मिलेगा, गिफ्ट मिलेंगे।
0: अच्छा अच्छा
1: अभी 4 तारीख को जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी ढेर सारी शुभकामनाएं
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: शिप्रा जी। तो बताइएगा आज इस कार्यक्रम में कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहेंगी?
1: जी आज गाना सुनना था, मुझे का नाम है साथी और गाने के बोले जिंदगी की तलाश में।
0: अच्छा, तो शिप्रा जी ये गीत जो है आप किन किन के साथ सुनना चाहेंगी?
1: जी पहले तो आपके साथ मैम,
0: धन्यवाद।
1: और कुछ दोस्तों हैं, बहुत दिन बाद तो बात हुई, मतलब मिले नहीं, मतलब सुने भी नहीं, अब तो थोड़ा बिजी थी
0: जी।
1: तो पहले तो है अनुपमा भट्टाचार्य जी और पूर्णिमा मैम और मोनिका जी और गणेश दास जी जो वेस्ट बंगाल से हैं, कलकत्ता से हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, हम जिनकी बातें सुनते हैं अच्छा लगता है, और जितने भी हमारे श्रोता है सभी को सुनाना चाहती हूँ
0: जी। तो चलिए शिप्रा जी, आपकी जो इंतजार की घड़ी है वो आज खत्म हुई, तो सुनवाते हैं
1: जी मैम।
0: आपको साथी फिल्म का ये गीत।
1: थैंक यू मैम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: आदरणीय दीदी को स्वागत सब प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, मेरी बात जो है राजू जी से हो रही है आगरा।
1: बिल्कुल राजेश कुमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी राजू जी, कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। और हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है?
0: जी आपकी जी आपकी आकाशवाणी टीम जो है वो भी बहुत अच्छी है। और बताइएगा फिर, आपके घर पर सब कैसे हैं, आपके
1: जी सब कुछ
0: आसपास?
1: ठीक
0: जी
1: जी आसपास ही माहौल सब ठीक है, घर पर भी सब ठीक है। मौसम थोड़ा गर्म है, यहाँ बारिश की बहुत कमी रही है इस बार।
0: अच्छा जी, बारिश की कमी है।
1: जी
0: हाँ जी, तो हम
1: इस
0: प्रार्थना
1: समय
0: करेंगे कि जल्द से जल्द जो है बारिश हो आपके शहर में।
1: जब मेरी बात आपसे हो रही है, तो मैं आपको लाइव और एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ कि एकदम खिली हुई चटकदार धूप निकली है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी,
1: जी
0: तो बताइएगा राजू जी, आज कौन सा गाना है जो आपने सोच रखा है इस कार्यक्रम में सुनना है?
1: आज फिल्म का नाम है अंधा कानून
0: जी
1: और गाने के बोल हैं मौसम का तकाजा है। इसमें आवाज दी है एस सुब्रमण्यम और आशा भोसले जी।
0: अच्छा जी अच्छा, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू दीदी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जी। जय श्री महाकाल। मेरी बात जो है मध्य प्रदेश से शिवा जी से हो रही है।
1: जी मैम, मैं शिवा लोहाटी बात कर रहा हूँ।
0: जी शिवा जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया, और आपका फोन आ गया तो और भी अच्छा हो गया।
0: चलिए, हमें भी अच्छा लगा कि हमारे कॉल आने से हमारे श्रोताओं को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो
1: जी
0: बताइए
1: बिल्कुल
0: जी, बताइएगा शिवा जी, क्या करते हैं आप?
1: मैम, मैं एक्चुअली ब्लाइंड हूँ
0: जी
1: और समाज सेवा के कार्यों में लगा रहता हूँ मैम।
0: जी बहुत अच्छी बात है कि आप जो है समाज सेवा के कार्य में जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है शिवा जी। बताइएगा कौन कौन है आपके घर पर?
1: मैम देखिए, चार भाई हैं हम, और मदर है, फादर है, सबकी शादी हो चुकी है
0: जी
1: जी, और
0: अच्छा जी।
1: तीन सिस्टर हैं
0: तो
1: जी।
0: ऐसे वक्त में आप क्या करते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं आप?
1: देखिए, मुझे म्यूजिक से तो बहुत लगाव है मैम,
0: जी
1: और खास तौर से रेडियो को तो मैंने बचपन से सुना है, क्योंकि माहौल घर में वही मिला था रेडियो का,

0: अभी भी मैं उसी को बेस्ट समझता हूँ।
1: अच्छा, तो रेडियो से बहुत ज़्यादा लगाव है, रेडियो सुनते हैं आप, बहुत अच्छी बात है।
0: जी
1: म्यूज़िक से तो हर किसी को लगाव होता है। तो आज कौन सा गाना
0: जी
1: सुनना चाहेंगे आप शिवाजी इस कार्यक्रम में?
0: मैम, पहले तो आपको और सभी सुनने वालों को और
1: जी
0: आपके पूरे घर परिवार को और पूरी टीम को आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैम।
1: आपको भी।
0: जी मैम, एक मूवी है हेलो ब्रदर, उसमें एक गाना रहेगा चांदी की डाल पे सोने का मोह।
1: जी, तो ये जो है आपने सोचा है कि कृष्ण जन्माष्टमी को सोचकर ही ये गाना जो है आपने चॉइस किया है ना?
0: जी मैम, गाने तो हम काफी सुनते रहते हैं मैम, तो इसी से रिलेटेड सुना जाए तो अच्छा है।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी जन्माष्टमी जो है आपके लिए बहुत ही खुशहाल रहे। तो चलिए शिवाजी सुनवाते हैं आपकी पसंद पर हेलो ब्रदर फिल्म का ये गीत। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
2: रानी, देख
3: देख
2: राजा ये
3: राजा ये
2: मटकी
3: मटकी
2: एक
3: एक
2: फटकी
3: फटकी
2: में
3: में
2: तोड़ता
3: तोड़ता
2: है।
3: है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड में। तो चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर से।
1: हेलो
0: डियर फ्रेंड, हेलो
1: हेलो
0: जी, मेरी बात जो है शमा जी से हो रही है।
1: जी हाँ
0: शमा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: जी हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। शमा जी, आप बम्बू फ्लैट में रहती हैं?
1: जी हाँ
0: हाँ जी। तो शमा जी, कुछ बताइएगा अपने बारे में कि क्या क्या हॉबीज़ हैं आपके, कौन कौन है आपके घर पर?
1: मेरे घर पर मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर, उनके बच्चे, इट्स अ क्वाइट बिग फैमिली एक्चुअली।
0: अच्छा, तो मतलब बहुत ही बड़ा जॉइंट फैमिली में आप जो है रहती हैं ना,
1: हाँ जी
0: तो बहुत
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी
0: लगता होगा ना?
1: जी हाँ
0: हाँ, तो
1: बहुत।
0: कभी भी आप जो है मतलब खालीपन एक जो रहता है वो कभी महसूस नहीं होती होगी आपको?
1: नहीं,
0: अच्छा जी, तो शमा जी क्या करती हैं आप खाली वक्त में?
1: जी मुझे एक्चुअली स्विमिंग का बहुत शौक है। जी हाँ, स्विमिंग के अलावा मैं बहुत सारे बुक्स रीड करती हूँ।
0: अच्छा, तो किस तरह की सिंगिंग पसंद है आपको?
1: मुझे ऐसे कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं होती है, बस ऐसी कोई भी धुन अच्छी लगती है।
0: अच्छा, तो किस तरह की बुक्स आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: हाँ जी, मुझे स्टोरी बुक ज्यादा पसंद है।
0: अच्छा, स्टोरी बुक्स।

0: बताइए का शमा जी, आज हमारे इस कार्यक्रम में कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहेंगे?
1: एक्चुअली मुझे अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुनना
0: अरिजीत सिंह का। अरिजीत ये जो सिंगर है आपको बहुत पसंद है?
1: है। थैंक यू।
0: अच्छा जी, तो चलिए ये गीत जो है आप अपने साथ और किनके साथ जो है सुनना चाहेंगी?
1: जी एक्चुअली मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ और मेरे फ्रेंड्स के साथ।
0: तो चलिए शमा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत छिछोरे फिल्म से।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो मैम,
0: जी नमस्कार, मेरी बात जो है स्वाति जी से हो रही है। महाराष्ट्र?
1: जी हाँ मैम,
0: महाराष्ट्र में कहाँ रहती हैं आप?
1: वाला महाराष्ट्र में रहती हूँ, जिला बुलढाणा में।
0: अच्छा, तो ये जो है आपका पहला प्रोग्राम का पहला कॉल है ना? आप
1: जी
0: पहली
1: मैम,
0: बार
1: पहली
0: शामिल
1: बार
0: हो
1: ही
0: रही
1: कॉल
0: है।
1: करता
0: हाँ जी,
1: हूँ। जी
0: तो आपको किस तरह से पता चला इस प्रोग्राम के बारे में? आप सुनती थी रेडियो में या फिर आपके किसी फ्रेंड्स ने बताया?
1: नहीं, मैं रेडियो में सुनती थी, 4 महीने पहले सुना था।
0: अच्छा, 4 महीने पहले सुना था आपने, तो आपको अच्छा लगा और आप भी जो है शामिल होना चाहती थी।
1: जी मैम,
0: जी स्वाति, क्या करती हैं आप?
1: मैं तो आंखों से ब्लाइंड हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: अच्छा, घर पे ही रहती हैं, तो खाली वक्त में कुछ जैसे म्यूजिक सुनना या फिर कुछ और क्या करना पसंद करती हैं? क्या अच्छा लगता है आपको?
1: मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, रेडियो भी सुनती रहती हूँ दिन भर।
0: अच्छा, रेडियो सुनती रहती है तो बहुत अच्छा लगता होगा ना, नई नई जानकारी प्राप्त होती होगी म्यूजिक के साथ साथ।

0: जी मैम,
1: हाँ जी।
0: नई नई जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है बहुत सारा।
1: तो आप
0: और
1: तो, हाँ जी,
0: मैंने जितने भी हिंदी सीखी है रेडियो की वजह से ही सीखी है।
1: क्या बात है, बताइएगा। वही है कि किसी चीज़ को जब हम शिद्दत से चाहते हैं तो हम उन्हें जो है अपना लेते हैं। तो बहुत ही आपने सच्चाई की बात कही है कि रेडियो के माध्यम जो है हम अपनी भाषा को ठीक कर सकते हैं।
0: जी
1: जी हाँ। तो आज स्वाति कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ?
0: तेरे नाम फिल्म का।
1: अच्छा, तेरे नाम फिल्म का शायद यही गाना है, ओढ़नी ओढ़ के नाचू।
0: जी मैम,
1: तो सुन, कॉल करने के लिए हमने आपका कॉल शामिल किया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके स्वाति। तो ऐसे ही हमारे साथ इस प्रोग्राम के साथ बने रहिएगा, सुनवाते हैं आपको आपके
0: जी
1: पसंद
0: मैम,
1: का ये गीत।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो।
0: हेलो, हाँ जी, मेरी बात जो है धर्मा जी से हो रही है, शादीपुर श्री विजयपुरम
1: जी मैडम, धर्माराजी बोल रहे हैं मैडम, शादीपुर से।
0: जी। धर्मा जी कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम।
0: अच्छा, आपके घर पर कौन कौन है आपके अलावा?
1: मेरे अलावा मेरी वाइफ है, मेरा एक छोटा 4 साल का बच्चा है, और साथ में मेरा ब्रदर है।
0: अच्छा, तो पूरा परिवार है आपका। तो गाना सुनना कैसा लगता है आपको धर्मा जी?
1: गाना सुनना मुझे अच्छा लगता है, रात को सोते समय तो मैं रोज सुनता हूँ गाना।
0: अच्छा, म्यूज़िक सुनते हैं ताकि जो
1: रिलैक्स
0: परेशानियां हैं वो कुछ वक्त के लिए जो है दूर हो
1: करने
0: सके।
1: जाते हैं।
0: जी,
1: जी
0: म्यूज़िक तो बहुत ही ज़रूरी है। क्या करते हैं आप वैसे प्रोफेशनल?
1: सर, मैं अभी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कलेक्शन डिपार्टमेंट में, महिंद्रा फाइनेंस में।
0: महिंद्रा फाइनेंस में है, तो किस तरह का काम होता है आपका?
1: काम तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टाइमिंग वैसा कुछ नहीं है, बस इलेक्शन का काम रहता है, थोड़ा हार्ड वर्क है, थोड़ा प्रेशर भी है। जी
0: अच्छा, प्रेशर भी है। तो काम के साथ साथ आप अपने परिवार को भी समय देते हैं?
1: हाँ, संडे संडे दे पा रहा हूँ मैं समय, बाकी टाइम तो काम में बहुत बिजी रहता हूँ।
0: बिल्कुल, क्योंकि काम के साथ साथ जो है परिवार को भी समय देना बहुत ज़रूरी होता है।
1: हाँ वो तो है ना।
0: जी, तो आज इस कार्यक्रम में कौन सा गाना है आप सुनना चाहेंगे?
1: अभी तो मैं लेटेस्ट अभी चुन रहा हूँ, बहुत दिन से वो जो आवारापन का है, तेरा मेरा रिश्ता है।
0: जी जी, ये गीत का जो है नया वर्षन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन पुराना वर्षन है।
1: नहीं, मैं
0: क्या मैं,
1: पुराना ही सुनता हूँ,
0: अच्छा, पुराना
1: पुराना।
0: वर्षन ही मैं सुना देती हूँ आपको। तो धर्मा जी, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं आपके पसंद के ये गीत।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।
1: विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम यूं ही गाती रहूं में। श्रोताओं, मौसम जब अपना रंग बदलता है तो मन के एहसास भी जैसे नई धुन छोड़ने लगते हैं। कभी बारिश की बूंदें कोई गीत सुनाती है तो कभी ठंडी हवाएं पुरानी यादों को जगा जाती हैं। तो क्यों ना मौसम की इन्हीं खूबसूरत करवटों को संगीत के सुरों के साथ महसूस किया जाए। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें मौसम की नरमी और प्यार की खूबसूरती दोनों महसूस होती है।

श्रोताओं, मौसम का मिजाज भी कभी कभी बड़ा दिलचस्प होता है। कभी धूप, कभी बादल और कभी अचानक बरसात। और जब मौसम कुछ यूं ही शरारत करने लगे तो दिल भी कह उठता है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

बारिश की रिमझिम बूंदों में एक अलग ही संगीत छुपा होता है। खिड़की पर गिरती बूंदे हो या मिट्टी की सौंधी खुशबू, हर चीज मन को छू जाती है। और जब सावन बरसे तो गीत अपने आप होठों पर आ ही जाते हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलामन एनजे रोकर हामांग एंगे रे तका लमक तेलंगी मीडियम वे 438.6 मीटर 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजय।

हाव आय कॅन जा इन वे होली द डिप्रेशन हे एन्झायटी इन रे नचू लाऊक नाहवट करन इन मे अम होल जा हो जा न अट हंग हेंग दाका न हेंग कांग चूक नहाई मुफे रे नहारी वलोन पो येन यिन कॉल वे होली तंगम तहारी वलोन ना छंग हायुन गनुप मिरी लोन रे परी आचा नई कुही ऐ होल जा

हाँ एक्नोलेज ng मेरी लोन वे होल रे इन वे तो डिप्रेशन हेक एनजाइटी इन रे ये चन वे नंग ही तनो मेरी लोन रे ना चो हांगी तर आई ए हेक अफी तर इन रे ओ आई मी नॉन ngen नो प्रो चा तन इन हरी वे लोन आचा आ ना चो हांगी तर आई ए आई हांग नो मेरी लोन चा हो जा न ट्रू रे कु मेरी लोन।

अभियां सुगम संगीत के कार्यक्रम में मनहर की आवाज़ में कुछ गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

पहले आज के शेष कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों के शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे कुछ फिल्मी गीत प्रसारित किए जाएंगे। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुनिए युवाणी कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6 बजे आप सुनेंगे डॉक्टर एस के अम्बस्ट।

के साथ की गई बातचीत विषय होगा अच्छे उत्पादन के लिए मृदा प्रबंधन। शाम 6:30 पर सुनिए पॉप मसाला कार्यक्रम। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे 7:15 पर। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत 7:30 पर पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा यादें। रात 8 बजे आप आनंद ले पाएंगे चित्रपट संगीत कार्यक्रम का। रोजगार समाचार और गौरव गान का समय रहेगा 8:30 और रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। सुबह 5:30 पर सुनिए अनमोल विचार तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 5:55 जिसमें जानकारी का विषय होगा बछड़ों में अतिसार व बचाव। सुबह 6:10 पर बताया जाएगा जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा जीवन शीर्षक पर। रामचरित मानस गान का समय रहेगा सवेरे 6:30। सुबह 6:40 पर वतन के गीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा सवेरे 6:50 पर। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। सवेरे 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देशरागनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे पिनाज मसानी और रानू मुखर्जी। तराने सुहाने कार्यक्रम का आनंद लीजिए सुबह 9 बजे। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप एस गोविंद राजन का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे। गीत गाते चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। चित्रगीत कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11:30। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। आपके नाम फिल्मी पैगाम फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी और प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति के बाद FM 100.9 MHz पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें आप नॉन स्टॉप म्यूजिक का आनंद लेंगे। और दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। निकोबारी कार्यक्रम के साथ हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे, जिसमें कुछ गीत सुनवाए जाएंगे। शाम 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पंकज उदास आशा भोसले और अशोक खोसला को। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। शाम 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:45 हुई हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

अभी आप किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया, जोशीला फिल्म का

गीत सुन रहे थे। गीतकार थे साहिर लुधियानवी तथा संगीतकार थे आरडी बर्मन। अब बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में तैयार कार्यक्रम का अगला गीत है शराबी फिल्म से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की तथा इस गीत को लिखा है अनजान ने।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार के गाए शराबी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ अमुदम। वणक्कम नेर्गले,

अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान बहनों और भाइयों को वर्षा का नमस्कार और आज के इस अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, हो सकता है उनका परिणाम तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन समय आने पर वही कर्म हमारे जीवन में सुख और संतोष बनकर अवश्य लौटते हैं। इन्हीं नेक विचारों के साथ चलिए अब हम बढ़ते हैं खेती किसानी की ओर। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और हमारा आज का प्रश्न है, बीजोपचार के बाद बोने से पहले बीजों को धूप में सुखाना चाहिए या फिर छांव में? प्रश्न एक बार फिर सुने, बीजोपचार के बाद बोने से पहले बीजों को धूप में सुखाना चाहिए या फिर छांव में? साथियों, आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए। कार्यक्रम के अंत में हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

0: द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: अच्छे उत्पादन के लिए मृदा प्रबंधन, इस संदर्भ में आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर एस के अंबश जी से। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत

0: डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, जब हम बात मिट्टी की करती है, मृदा प्रबंधन की हम जब करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि लोग जो भी ज़मीन में दिखता है उसको मिट्टी समझते हैं, तो एक किसान की दृष्टि से, कृषक की दृष्टि से मिट्टी से क्या तात्पर्य होता है?
1: देखिए, मिट्टी अगर जहाँ तक हम जब जब मृदा की बात करते हैं तो ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है जब जहाँ पर हम फसल लेते हैं। और ये क्यों उपयोगी है, इसका एक मानक है कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में करीब करीब 100 साल लग जाते हैं।
0: अच्छा,
1: और चूंकि 100 साल लग जाते हैं इसलिए हमारे लिए मिट्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इस मिट्टी में ना केवल धूल है जिसको आप मिट्टी कहते हैं, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है,
0: जी
1: इसमें साथ ही साथ में बैक्टीरिया हैं, पानी है, हवा है, मिनरल्स हैं, एंथ्रोपोड्स हैं और नेमोटोड्स हैं, अर्थवर्म्स हैं। ये सारी चीज़ मिलकर हमारी मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाती है
0: जी
1: और इन सब चीज़ को मिलाने से ही जिसको हम संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि ये मिट्टी
0: मिट्टी
1: होती
0: है।
1: है।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे थे कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में 100 साल लगते हैं, तो इसी से साफ हो जाता है कि मिट्टी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: तो इस मिट्टी को ऐसे ही बनाए रखने, इसका संरक्षण करने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, इसका नुकसान कैसे हो सकता है, पहले वो बताएं आप।
1: देखिए, मृदा संरक्षण हमारे लिए पर्टिकुलरली अंडमान और निकोबार द्वीप के संदर्भ में
0: जी
1: बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। विशेष तौर पे इसकी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत इंटेंस बारिश होती है जिसमें बहुत तेज़ी से जो बारिश है, साथ ही साथ यहाँ पर जो ज़मीन है वो ढलाऊ वाली ज़मीन है, हिल वाली ज़मीन है जिसमें कि स्लोप बहुत ज़्यादा होता है,
0: ढलान ज्यादा है।
1: ढलान ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब बारिश होती है उस समय ये मिट्टी पर जब स्ट्राइक करती है और ये मिट्टी डिटैच हो जाती है, एक
0: अच्छा,
1: दूसरे से अलग हो जाते हैं मिट्टी के जो कण हैं,
0: जी
1: और कण अलग होने के बाद में ये धीरे धीरे बहना शुरू कर देते हैं और ये चीज़ हमें पता नहीं चलती है कि जो हमारी फर्टाइल पार्टिकल्स हैं वो बहने शुरू हो गए हैं।
0: जी
1: कुछ समय के बाद में यही मिट्टी धीरे धीरे एक रिल का फॉर्म कर लेता है जिसमें छोटी छोटी सी नालियाँ आपको दिखती हैं, बाद में यही रिल जुड़ते हुए एक बड़ी नाली का रूप धारण कर लेती हैं। और इन्हीं नाली के जरिए हमारी जो बहुत ही उपजाऊ पार्टिकल्स हैं, क्ले मिट्टी जो होती है, ऊपर से बहकर पहाड़ियों से वो नीचे बहकर बहना शुरू कर देती है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका संरक्षण करें।
0: अच्छा, तो इस तरह से जो नुकसान होता है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपने जो कहा कि जो उपजाऊ मिट्टी ऊपर की होती है वो बहकर पूरी नीचे चले जाती है, और पूरी तरह से मिट्टी एक तरफ से हम कह सकते हैं कि बंजर हो सकती है।
1: बिल्कुल
0: तो इसके लिए जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि अक्सर ज़मीन ढलाऊ है, तो उस ढलान वाली ज़मीन पर किस तरह के कृषि कार्य करें, क्या क्या सावधानी बरतें?
1: यहाँ हमारे द्वीप में समूह में मुख्यतः सुपारी और कोकोनट के प्लांट्स ही हैं।

0: और ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी प्रकार से कवर क्रॉप जैसे कि घास या इस प्रकार का अगर हट गया है तो ये ज़रूरी है कि हम उस जगह के पर घास को लगाएं,
1: अच्छा, यानी ज़मीन नंगी ना रहे
0: नंगी ना रहे,
1: जी।
0: क्योंकि जो बारिश का डायरेक्ट इम्पैक्ट है सबसे पहले हमको उसको रोकना है जो कि सॉइल पार्टिकल्स को डिटैच ना करें। तो कोई ना कोई कवर क्रॉप को लगाना बहुत ज़रूरी है। और कवर क्रॉप के साथ में अगर आपकी ढलान वाली ज़मीन अगर नंगी हो गई है या आपने कोई टेरेसिंग का काम किया है जहाँ
1: सीढ़ी
0: पर
1: बनाते हैं
0: सीढ़ी वाला जो बनाने का काम है, तो ये जो सीढ़ियाँ होती हैं इस सीढ़ी में आपकी जो बेंचेस होते हैं बेंचेस का स्लोप इनवर्ड होना चाहिए, इनवर्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो बेंचेस हैं उसका स्लोप अंदर की तरफ होना
1: ढलान
0: चाहिए,
1: उनकी अंदर की
0: अंदर
1: ओर।
0: की तरफ होना चाहिए। साथ ही साथ जब हम इनवर्ट स्लोप रखते हैं तो जो बारिश का पानी मुंह से निकलने वाला होता है वो नीचे आपके कोने में जाएगा, उस पानी के लिए एक छोटी ट्रेंच बनाना चाहिए। ये ट्रेंच भी नंगी नहीं होनी चाहिए, इसमें घास लगी हुई होनी चाहिए। इसको हम वैज्ञानिक तौर से इसको ग्रास्ड वाटर वेज कहते हैं। और ये जो घास लगाकर जो ट्रेंच बनती है इसको किसी कोने पर ले जाकर इसको ज्वाइन करते हुए चाहे तो ग्रास्ड वाटर वे से या पक्की सीमेंट की नाली बनाकर इस पानी को नीचे तक ले जाना चाहिए। इसमें कई बार इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी को सेफली नीचे ले जाया जा सके। एक कहावत है इसमें जिसमें कहते हैं कि पानी को दौड़ने मत दो, पानी को थाम के रखो,
1: जी,
0: क्योंकि जब पानी दौड़ना शुरू करता है तो ये नुकसान बहुत करता है,
1: अपने साथ बहुत कुछ ले जाता
0: बहुत
1: है।
0: कुछ ले जाता है, मिनरल्स ले जाता है, आपकी फर्टिलिटी ले जाता है। तो इसलिए पानी को हमें आराम से चलते हुए निकालना है और उसकी वेलोसिटी को स्पीड को तोड़ते हुए लेके जाना है ताकि वो दौड़े ना, थाम के चलो।
1: बिल्कुल,
0: तो नाली का इस्तेमाल करते समय में हम उसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम शूट स्पिलवे कहते हैं और या ड्रॉप स्ट्रक्चर कहते हैं ताकि जो वेलोसिटी है पानी की
1: पानी की
0: उसको
1: गति
0: हम कम
1: उसको
0: कर
1: कम
0: सकें,
1: करते हैं।
0: कम कर सकें।
1: अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि अगर सीढ़ी सीढ़ी नुमा खेत किसान भाई करते हैं,
0: जी
1: ट्रेंचेस बनाते हैं, जो बेंचेस बनाते
0: जी
1: हैं, तो उसमें ढलान अंदर की ओर होनी चाहिए और उसको पतली पतली नालियाँ, उसमें भी घास लगी होनी
0: घास लगी
1: चाहिए
0: हुई होनी चाहिए,
1: और ज़मीन नंगी बिल्कुल नहीं होनी
0: बिल्कुल
1: चाहिए, कुछ
0: बिल्कुल
1: ना कुछ उसमें होना चाहिए।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा ख़ास तौर पर जो पहाड़ी ज़मीन है, ढलान में किसान भाई नारियल सुपारी लगाते हैं, तो उसके लिए जब रोपाई होती है तो गड्ढे वगैरह खोदते हैं, तो ऐसे में भी मिट्टी का कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ बातें इसमें भी ध्यान देनी है।
0: जी इसीलिए हमारे द्वीप समूह में ये ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि जो ट्यूबर क्रॉप्स हैं इनको आप ढलान वाली जगह पे ना लगाएं,
1: जड़ वाली जो
0: जो
1: फसलें
0: जड़
1: हैं।
0: वाली फसलें हैं। और ऐसी इंटर क्रॉप्स लें जैसे आपका इवन फ्लावर्स भी है और उस फ्लावर्स वगैरह को भी ले सकते हैं जिनमें कि आपको इनकम तो मिले लेकिन ज़्यादा से कम टिलेज ऑपरेशन करना पड़े।
1: अच्छा, प्रकर्षण क्रियाएं कम से कम होनी
0: हाँ कम
1: चाहिए,
0: से कम
1: खुदाई
0: करें,
1: वगैरह जो
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल
1: अच्छा, लेकिन जो नारियल सुपारी को जब रोपते हैं तो उसके लिए जो गड्ढे वगैरह खोदते हैं,
0: जी।
1: तो उसमें भी कुछ वैज्ञानिक सलाह लेनी चाहिए।
0: देखिए उसमें मुख्यतः हम ये करते हैं कि जब शुरू में आप गड्ढे खोदते हैं और वो मिट्टी निकाल के फिर उसमें फार्म यार्ड कंपोस्ट वगैरह सब डालते
1: जी,
0: हैं, डालने के बाद में जब आप इसको जो ऊपर है उसमें कोई मल्चिंग मटेरियल रख दीजिए
1: अच्छा, बिछावन जो
0: जैसे
1: कुछ रख दें,
0: चारा है, धान का जो स्ट्रॉ है,
1: पुआल जो है।
0: पुआल है, उसको आप ऊपर रख दें ताकि आपका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है बारिश का वो मिनिमाइज़ हो सके, कम से
1: अच्छा
0: कम रहे।
1: जी,
0: तो इसको ढांक करके हम इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं।
1: और प्लांटेशन के बीच में, नारियल सुपारी के बीच में आप लोग सलाह देते हैं कुछ नहीं तो चारे वाली फसलें, घास उगा सकते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल, इसका डबल फायदा हो जाता है, घास तो मिल ही जाती है साथ ही साथ में ये हमारी जो मृदा का क्षरण है
1: वो
0: उसको
1: भी रुक
0: रोकने में
1: जाएगा।
0: भी काफ़ी मदद करती है।
1: चलिए, तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि किस तरह से जो बहुमूल्य मिट्टी है उसको बहने से या नष्ट होने से रोककर जो उपजाऊपन की शक्ति है उसको बना के रखें।
0: जी
1: इसके अलावा एक जो पोषक तत्व तो प्रबंधन की बात आती है, चाहे वो धान की फसल हो या चाहे हमारी बागानी फसलें हों, तो पहले हम धान की फसल की बात करते हैं, जो निचली ज़मीन है,
0: जी
1: तो वहाँ पर मिट्टी में पोषक तत्वों को किस तरह से किसान भाई बनाए रखें ताकि जो उपजाऊपन की शक्ति है वो बनी रहे।
0: मिट्टी की जहाँ तक उर्वरकता की बात है,
1: जी
0: जब हम हमेशा कंटिन्यूअस रूप से धान के ऊपर धान हर साल बाई साल लेते चले जाते हैं तो एक पर्टिकुलर जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होने लग जाती है।
1: अच्छा
0: और ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक तरीका तो यह होता है कि हम वहाँ पर क्रॉप रोटेशन लें, यानी कि फसल चक्र को परिवर्तित करते रहें।
1: अच्छा
0: ये जो हमारा एक साल धान, दूसरे साल अगर हम कोई और क्रॉप लें जो कि पल्स वाली हो, जो कि आपकी नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती हो,
1: दाल वाली फसलें
0: दाल
1: हो।
0: वाली फसलें हो, तो इस प्रकार से कुछ ऑल्टरनेट करें जिससे कि हमारा जो न्यूट्रिएंट बैलेंस मिट्टी में है वो

0: रहे, लेकिन अगर हम सिर्फ धान ले रहे हैं ऐसी स्थिति में ये है कि जब भी हम हर साल धान के लिए जुताई शुरू करते हैं तो सेकंड प्लाउ के समय में उस समय आप इसमें हरा जो मैन्योर होता है, हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं उसको, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: ढैंचा वगैरह जो है
0: ढैंचा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जिंदाबल्ली बहुत मात्रा में अवेलेबल होता है तो जिंदाबल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये माना गया है कि करीब करीब 6.6 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम जिंदाबल्ली को प्लाउ के करते समय में डाल दें और मिक्स कर दें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जिंदाबल्ली के अलावा 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम गोबर की खाद, वो भी इसको हम अगर दूसरे प्लाऊ के समय में अगर मिला दें तो इसका हमारा जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है उससे काफ़ी हद तक उसकी भरपाई हो जाती है। जहाँ तक रासायनिक खाद की बात है, क्योंकि आजकल हम जो बात करते हैं उसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं,
1: समन्वित पोषक तत्वों
0: की, तो इंटीग्रेटेड में जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपके ये गोबर की खाद, ग्रीन मैन्योर, इसके साथ ही साथ रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि हम बेसल डोज के रूप में 50% नाइट्रोजन, जो रिकमेंडेड डोज होता है उसका 50% नाइट्रोजन, 100% फास्फोरस और 75% पोटाश को इस्तेमाल करें।
1: यानी जब जुताई करते हैं उसी समय खेत में डाल दें 50% नाइट्रोजन।
0: हाँ, इसका इस्तेमाल उस समय किया जाए। अब रिकमेंडेड डोज जो हमारे धान के लिए किया जाता है वो जनरली इसमें ये कहा जाता है कि 90 kg नाइट्रोजन, 60 kg फॉस्फोरस और 40 kg पोटाश, ये रिकमेंडेड डोज है। तो अब इसका 50% नाइट्रोजन यानी करीब करीब 45 kg नाइट्रोजन को हमको एज ए बेसल डोज डालना चाहिए, जबकि 60 kg फास्फोरस डालना चाहिए और साथ ही साथ करीब करीब हमें 30 kg पोटाश को डालना चाहिए।
1: ये जुताई करते समय, रोपाई से पहले खेत में दे देना,
0: रोपाई के से करते समय कर देना चाहिए उसको।
1: बिल्कुल, तो ये तो इसके बाद फिर जो उर्वरकों का प्रबंध है ना वो खड़ी फसल में करना चाहिए।
0: हाँ, इसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में ये कहा जाता है कि जो 40 से 50 दिन के बाद में जो बची हुई मात्रा है वो हमें देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो जो हमारा 25% नाइट्रोजन जो बचा हुआ है, क्योंकि हमने पहले 50% ही दिया है, तो अब 25% नाइट्रोजन 40 से 50 दिन के बाद में दें, जबकि 60 से 70 दिन के बाद में आप बचा हुआ 25% नाइट्रोजन और 25% पोटाश जो है इसको देकर पूरा जो 100% रिकमेंडेड डोज है उसको दे सकते हैं।
1: अच्छी बात है डॉक्टर साहब। यहाँ पर अक्सर जो किसान भाई हैं, कुछ एक दिक्कत ये होती है कि वो नाइट्रोजन तो यूरिया के रूप में देने में बहुत उत्सुकता दिखाते हैं, लेकिन जो पोटाश हुआ या फास्फोरस हुआ, इन उर्वरकों का इस्तेमाल वो बहुत कम करते हैं, तो इस तरह का जो इस्तेमाल है इससे भी मिट्टी की दशा पर और उपजाऊपन की शक्ति पर कुछ असर होता है?
0: बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है उसमें संतुलन का हर एक जो न्यूट्रिएंट्स है, खास तौर से जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसका संतुलन बना हुआ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, वो पोटाश की कमी को दूर करने के लिए उसको डालें, और फास्फोरस जो सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में अगर फास्फोरस हो तो जो रिकमेंडेड डोज है उसमें देना ही फायदेमंद होता है।
1: यानी तीनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना से कि सिर्फ यूरिया का प्रयोग करें।
0: हाँ,
1: क्योंकि उसे हरियाली थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है।
0: नहीं, ये तीनों का इस्तेमाल हमारी मिट्टी के उपजाऊपन के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब ये तो बात हुई धान की फसल की।
0: जी,
1: इसके अलावा जो बागानी फसलें हैं उसके लिए पोषक तत्व प्रबंधन कैसे हो?
0: बागानी फसलों में मुख्यतः हमारे पास नारियल और सुपाड़ी के बगीचे हैं।
1: जी,
0: तो नारियल के जो पौधे होते हैं उसमें जनरली ये कहा जाता है नारियल और सुपाड़ी दोनों के लिए कि इसमें कंपोस्ट उनकी आयु के हिसाब से, जो पेड़ पौधे हैं उनकी आयु के हिसाब से कंपोस्ट डालना चाहिए। और ये एक वैज्ञानिक तौर से निष्कर्ष निकला है जिसमें कि अगर 2 साल से कम की के आयु के पौधे हैं, चाहे वो नारियल के हों या सुपाड़ी के, तो दोनों ही स्थिति में हमें 2 kg प्रति प्लांट की दर से कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये जो पौधों की आयु 2 से 5 साल के बीच में

0: तो 5 किलोग्राम प्रति पौधे की दर से कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि यही प्लांट्स की आयु अगर 5 साल से ज़्यादा हो तो 10 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर 20 साल तक की जो पेड़ हैं, 10 से 20 साल के पेड़ हैं, तो उसमें आपको 20 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से कंपोस्ट की खाद का
1: देनी है।
0: इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश,
1: पोटाश।
0: इसको भी डालना जरूरी है, क्योंकि ये तभी जाकर आपका एक समन्वित पोषक तत्व प्लांट्स को मिलते हैं।
1: जी
0: तो एक इसमें ये होता है कि 5 साल एक एवरेज है कि करीब 500 ग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस और 1 किलो 200 ग्राम पोटाश
1: अच्छा
0: प्रति प्लांट, ये आपको सुपारी और नारियल के पौधों में डालना चाहिए
1: हर साल।
0: हर साल।
1: अच्छा
0: इससे क्या होगा कि आपका एक मिट्टी में जो पोषक तत्व का समन्वय है और सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको के पौधों को मिल सकेंगे और आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सकेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल बात अक्सर जैविक कृषि की होती है,
0: जी
1: ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे कहते हैं,
0: जी
1: और उसमें किसानों को कहा जाता है कि आप प्राकृतिक खाद, हरी खाद और जो केचुआ खाद, कंपोस्ट, इन सब का ही प्रयोग करें, उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करें।
0: जी
1: तो अगर इन दोनों को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आप क्या फ़र्क बताएंगे?
0: देखिए, रासायनिक खाद, जहाँ तक हम सिर्फ रासायनिक खाद का जब इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे मिट्टी की दशा में भी इसमें नुकसान होता है। मिट्टी में एक कॉम्पैक्टनेस आता है और कॉम्पैक्टनेस के साथ ही साथ मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, कुछ लंबे समय के बाद में वो फर्टिलिटी लेवल कम हो जाती है।
1: अच्छा
0: इसके अलावा मैं यही रासायनिक खाद जो कि थोड़ी मात्रा में जो बच जाते हैं, जिसको हम रेसिड्यूअल कहते हैं इफेक्ट, वो जाके हमारे पानी वगैरह में जाके मिलते हैं, और इन रसायन का उपयोग कहीं ना कहीं से हम इनडायरेक्टली रूप से हमको करना पड़ता है और इसका हमारे हेल्थ पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।
1: अच्छा
0: तो ये ज़रूरी है कि रासायनिक खाद से हमारी उपज तो ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन अगर हम अपने स्वास्थ्य के बारे में, मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में दोनों पर अगर ध्यान करें तो कंपोस्ट वाली खाद, केंचुए वाली खाद, ये दोनों बहुत ही मूल्यवान हैं। और मैं किसान भाइयों को अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि इस खाद का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो अब दूसरी बात है कि जो कंपोस्ट वाली खाद है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसको हमें खुद को बनाना होता है। ये हमारा फ़ायदा भी है क्योंकि हमारे जो अवेलेबल मटेरियल है उसी से बन भी जाता है। थोड़ा सा ये देखा गया है कि कंपोस्ट वाली खाद को डालने से ऐसा लगता है कि ग्रोथ पे फर्क पड़ रहा है, तो किसान भाई ये तुरंत जो है रासायनिक खाद का उपयोग करने लगते हैं कि इससे ग्रोथ पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन लॉन्ग रन पे ऐसा देखा गया है, विशेष तौर पे जहाँ पर कि रेनफेड एरिया है, जो हमारा एरिया है, यहाँ पर कंपोस्ट वाली खाद या केंचुए वाली खाद से ग्रोथ बढ़ती है और यील्ड भी बढ़ती है।
1: शुरुआती अवस्था में ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी वृद्धि में कमी नजर आए,
0: जी
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: आखिरकार जो है वो वृद्धि
0: बिल्कुल
1: बराबर हो जाती है।
0: बिल्कुल सही
1: चलिए,
0: है।
1: तो हमारे इन द्वीपों में जो किसान भाई हैं वो अगर इन खादों का, और जैसे आपने बताया जिंदा बल्ली वगैरह यहाँ पे प्रचुर मात्रा में
0: जी
1: उपलब्ध है,
0: जी
1: तो इसका प्रयोग करें तो मिट्टी की जो दशा है वो और अच्छी हो सकती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: तो डॉक्टर साहब, आपने अच्छे उत्पादन के लिए मृदा प्रबंधन के बारे में अच्छी जानकारी हमारे किसानों को दी है, किस तरह से उनको कटने से बचाया जाए, उपजाऊपन की शक्ति को कैसे बनाए रखा जाए। उम्मीद करते हैं कि किसान इन बातों पर जरूर ध्यान देंगे। आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

कृषकों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार किसानों की मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए नई नई योजनाएं लॉन्च कर रही है, ताकि किसान भाई इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि कर सके। किसी भी फसल के बेहतर उत्पादन में बीजों की अहम भूमिका होती है। यहाँ तक कि बिना बीज के हम फसलों को उगाने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती। फसलों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए प्रमाणिक व गुणवत्तापूर्ण बीज का मिलना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों की सहूलियत के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बीज ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को सरकार की तरफ से उच्च कोटि के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत उगाए गए फसलों के बीजों को जिले स्तर पर स्थित कृषि फार्म में रोपित किया जाता है, जिसे हम ब्रीडर बीज के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात अगले वर्ष ब्रीडर बीजों से उत्पादित फसलों से प्राप्त होने वाले उत्पादन को फाउंडेशन बीज कहा जाता है। इस फाउंडेशन बीज को समूह के किसानों के खेतों में बुवाई कराई जाती है। एक वर्ष के पश्चात जो भी बीज प्राप्त होते हैं उसे प्रामाणिक अर्थात सर्टिफाइड बीज कहा जाता है। इन सर्टिफाइड बीजों को पुनः बुवाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। बीज ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके ही क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसानों की आय मुख्य रूप से फसलों के उत्पादन पर ही निर्भर होती है। फसलों की स्थिति बिगड़ने पर उन्हें आर्थिक रूप से काफी हानि का सामना करना पड़ता है, जबकि फसलों के बेहतर उत्पादन पर उनकी आय बढ़ जाती है। फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए गुणवत्ता बीजों का होना आवश्यक है। यदि किसान अपने खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीज की बुवाई करते हैं तो स्वाभाविक रूप से फसल का उत्पादन उत्तम होता है। हालांकि अभी तक किसानों को गुणवत्ता बीज के लिए इधर उधर, यहां तक कि उन्हें दूसरे राज्यों में भटकना पड़ता है, परंतु सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बीज अपने ही क्षेत्र में बड़ी ही सरलता से मिल जाएंगे। प्रामाणिक बीजों के उत्पादन के लिए किसी खास तरह की नहीं बल्कि सामान्य तरीके से ही खेती की जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र से फाउंडेशन बीज लाने के बाद उन्हें साधारण तरीके से ही खेतों में बोया जाता है। सिर्फ किसानों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उन बीजों में किसी भी अन्य फसल का बीज मिश्रित ना हो। ऐसा होने से सही गुणवत्ता वाली बीज नहीं बन पाएगी। उदाहरण के रूप में यदि कोई किसान गेहूं के बीज को तैयार करना चाहता है तो इसके लिए सभी कार्य साधारण तरीके से ही करनी चाहिए। किसान भाई इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनमें किसी अन्य फसल का बीज न मिलने पाए और फसल को रोग लगने से बचाने में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि फसल में कोई रोग लग जाता है तो प्रमाणिक बीज नहीं बन पाएंगे। यदि कोई भी किसान इस योजना से जुड़ना चाहता है तो उन्हें इसके लिए अपने जिले के अंतर्गत आने वाले कृषि कार्यालय में जाकर जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करना होगा। इसके लिए आप अपने नजदीकी कृषि सलाहकार से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीज ग्राम योजना से जुड़ने के लिए एक निर्धारित ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात आप इस योजना से जुड़कर अपनी आय में सुनिश्चित रूप से वृद्धि कर सकते हैं।

0: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: किसान साथियों, अब वक्त हो चला है आज पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर बताने का। और कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे पूछा था, बीजोपचार के बाद बोने से पहले बीजों को धूप में सुखाना चाहिए या फिर छांव में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है छांव में। जी हाँ साथियों, बीजोपचार के बाद बोने से पहले बीजों को छांव में सुखाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर लिया होगा। किसान साथियों, अगर हम घड़ी की ओर देखें तो समय हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे पा रही है, इसलिए हमें लेना होगा आपसे विदा। लेकिन कल शाम 6 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: बीज ग्राम योजना, इस विषय में अभी आप ये चर्चा सुन रहे थे।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है।

अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पॉप मसाला। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में खाकी फिल्म के इस गीत से। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है राम संपत ने।

अभी आप सलमान खान का गाया किक फिल्म का गीत सुन रहे थे और इस गीत को रीमिक्स किया था किरण कामत ने। हिट स्टोरी 2 फिल्म में आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत।

अभी आप एक्स एंड रिप्ले फिल्म का गीत सुन रहे थे। गायक कलाकार थे कार्तिक और अंतरा मित्रा। अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए पटियाला हाउस फिल्म में महालक्ष्मी अय्यर हार्डकोर और जस्सी की मिलीजुली आवाज़ों में ये गीत।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, कल सुबह 5:30 पर सुनिए अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 5:55, जिसमें जानकारी का विषय होगा बछड़ों में अतिसार और बचाव। सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा जीवन शीर्षक पर।

सवेरे 7:15 पर सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देशरागनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

तराने सुहाने कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे सुबह 9 बजे। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप एस गोविंद राजन का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से। इस ब्रेक के बाद

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
8: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
9: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वस्त्र और परिधान क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए निरंतर प्रयासों पर बल दिया। कल SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मसाला फसलों की उन्नत किस्मों और नवीन तकनीकों की दी जानकारी। और प्रशासन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों के परिवहन और मजदूरी नुकसान मुआवजे के दिशा निर्देशों में किया संशोधन।

सांधे समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। उन्होंने निफ्ट के विद्यार्थियों और पेशेवरों की पिछले 4 दशकों की उपलब्धियों की सराहना की। बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोफ के बीच बैठक जारी है। 2 दिवसीय किर्गिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन से द्विपक्षीय बैठक की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इससे पहले आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान से भी मुलाकात की और रक्षा, अर्थव्यवस्था, फार्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में संघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मध्योत्तर अंडमान और निकोबार जिले के स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान शिक्षकों के लिए शिक्षा निदेशालय के विज्ञान प्रकोष्ठ की ओर से 3 दिवसीय विज्ञान प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण 3 विद्यालयों राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबडीन, रविन्द्र बांग्ला विद्यालय और राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ। आज राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबडीन में प्रशिक्षण का समापन समारोह हुआ। इस अवसर पर उपनिदेशक शिक्षा विज्ञान राम प्रवेश ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण से सिद्धांत और प्रयोग के बीच की दूरी कम होती है। उन्होंने शिक्षकों से अपने विद्यालयों में अधिक से अधिक प्रयोग कराने और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का आग्रह किया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों ने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के विभिन्न प्रयोग किए तथा प्रयोगशाला उपकरणों के सही उपयोग, सुरक्षा उपायों और प्रदर्शन तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण में विभिन्न सरकारी विद्यालयों के 98 विज्ञान शिक्षकों ने भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र के धापोली में हाल ही में सतत विकास के लिए नवाचार तकनीकों विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में ICAR केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अजीत ने मसाला फसलों पर संस्थान के अनुसंधान और नवीन तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने भारतीय तेजपत्ता, मालाबार इमली और दालचीनी की उन्नत किस्मों तथा प्रवर्धन तकनीकों पर प्रकाश डाला। प्रदर्शनी में संस्थान द्वारा विकसित द्वीप सिनरब दालचीनी छाल रगड़ने के उपकरण का प्रदर्शन भी किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधियों ने इन तकनीकों में रुचि दिखाई। इस अवसर पर 150 से अधिक विद्यार्थियों को कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन भी दिया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर चिन्मया मिशन श्री विजयपुरम की ओर से 4 सितंबर को 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से समूह भजन प्रतियोगिता होगी, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। वहीं दोपहर 3 बजे भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूप विषय पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें नर्सरी से 2 कक्षा तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9434262907 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों के लिए परिवहन और मजदूरी नुकसान मुआवजे संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नए प्रावधान 1 अगस्त 2026 से लागू हो गए हैं। संशोधित नियमों के तहत जीवीपंत अस्पताल से मुख्य भूमि के सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए भेजे गए मरीज अब इकोनॉमी क्लास से हवाई यात्रा कर सकेंगे। मरीज और एक सहायक के आने जाने के हवाई यात्रा खर्च के लिए अधिकतम 40,000 रूपए तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। स्ट्रेचर की आवश्यकता वाले मरीजों के लिए नकद रहित हवाई यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध

कराई जाएगी। इसके अलावा सभी पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 20 दिनों तक प्रतिदिन 1,000 रुपये की मजदूरी नुकसान क्षतिपूर्ति दी जाएगी। संशोधित दिशा निर्देश स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। डॉ बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में नए डिग्री और डिप्लोमा छात्रों के लिए AICTE के अनिवार्य छात्र इंडक्शन कार्यक्रम आरंभ 2026 और प्रवेश 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नए छात्रों को उच्च शिक्षा के माहौल से परिचित कराना और संस्थान की विभिन्न गतिविधियों के प्रति जागरूक करना था। समापन समारोह में डीब्रेड की प्राचार्य प्रोफेसर डॉ सन्मुख कौर ने छात्रों को आत्म अनुशासन, धैर्य और एकाग्रता का महत्व बताया। उन्होंने छात्रों से पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी और अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान अभिविन्यास सत्र, खेलकूद, टीम निर्माण गतिविधियां, शैक्षणिक भ्रमण, साइबर सुरक्षा और नशा जागरूकता सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेताजी स्टेडियम खेल परिसर स्थित स्विमिंग पूल रखरखाव कार्य के कारण कल बंद रहेगा। खेल एवं युवा कार्य विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वस्त्र और परिधान क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए निरंतर प्रयासों पर बल दिया। कल SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मसाला फसलों की उन्नत किस्मों और नवीन तकनीकों की दी जानकारी। और प्रशासन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों के परिवहन और मजदूरी नुकसान मुआवजे के दिशा निर्देशों में किया संशोधन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आ गए सैलरी?
4: हाँ।
3: नए झुमके?
4: ना, पहले बचत।
3: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या?
4: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को विशेष चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समुद्र क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 2 सितंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज़रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार नालंदा जलयान ननकौड़ी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर कल 1 सितंबर को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और जलयान बृहस्पतिवार 3 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से छूटकर ननकौड़ी होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कैमल बे कल 1 तारीख को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापस छूटेगा। एमवी रानी चंगा मायबंदर होते हुए डिगलीपुर जाने के लिए परसों यानी 2 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान 3 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए एमवी बाराटान कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर बाद 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी चंगा कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इस जलयान की वापसी अगले दिन यानी 2 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। अब सुनिए जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 112-03192-23210-01-03192-23307 और 03192-23204-00। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

अभी आपने सुना उस्ताद सुल्तान खान और रेखा भारद्वाज का गाया सुपरस्टार फिल्म का ये गीत। बोल थे शब्बीर अहमद के तथा धुन बनाई थी शामिर टंडन ने। अब सुनिए नीरज श्रीधर और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में गॉड टू सी ग्रेट हो फिल्म का ये गीत। जली शेरवानी के लिखे गीत को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

नीरज श्रीधर और श्रेया घोषाल के गाए गॉड तू सी ग्रेट हो फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 में है। अब युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम होगा युवो वाणी।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों समय जीवन का वह शिक्षक है जो बिना कुछ कहे हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जो समय आज हमारे पास है वही हमारे भविष्य की नींव रखता है। बीता हुआ समय चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो वह वापस नहीं आता। इसलिए हमें बीते कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता में अपना आज नहीं खोना चाहिए। जीवन की असली सुंदरता इसी में है कि हम हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने सपनों की ओर एक कदम आगे बढ़े। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल हो यह जरूरी नहीं, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच हम किस तरह आगे बढ़ते हैं यही हमारे व्यक्तित्व और भविष्य को निर्धारित करता है। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों आज माह का 5वां सोमवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें।

दोस्तों कहते हैं ना, कुछ लोग हमसे दूर होकर भी हमारे दिल के सबसे करीब रहते हैं। उनकी मौजूदगी हमारे आसपास ना सही, लेकिन उनकी यादें हर पल हमारे साथ होती हैं। दिन कितना भी व्यक्त क्यों ना हो, किसी खास शख्स का ख्याल अचानक चेहरे पर मुस्कान ले आता है। दोस्तों, जब कोई इंसान हमारे लिए इतना खास हो जाए कि उसकी याद हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो फिर उसे महसूस करने के लिए उसका हमारे सामने होना जरूरी नहीं रहता।

दोस्तों, कभी कभी दिल को किसी की आदत इस कदर हो जाती है कि उसे समझाना मुश्किल हो जाता है। दिमाग अपनी जगह बहुत कुछ सोचता है, लेकिन दिल अपनी ही दुनिया में रहता है। किसी की एक मुस्कान, एक मुलाकात या बस उसकी मौजूदगी ही दिल को खुश करने के लिए काफी होती है। जब इंसान अपने दिल की भावनाओं को खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता, उसे पता होता है कि सामने वाला उसके लिए बहुत खास है, लेकिन उसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान की तलाश होती है जिसके सामने हमें अपने दिल की बातें कहने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत ना पड़े। कोई ऐसा जो हमारी खामोशी को समझ सके, हमारी छोटी छोटी खुशियों में खुश हो और जिसके साथ होने से जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत लगने लगे। दोस्तों, जब लंबे इंतजार के बाद जिंदगी में कोई खास इंसान आता है और हमें लगता है कि शायद हमारी तलाश पूरी हो गई है, उसके आने से अकेलापन कम महसूस होने लगता है और साधारण से पल भी खास लगने लगते हैं।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। जब किसी के लिए दिल में प्यार इतना गहरा हो जाए कि उसकी खुशी अपनी खुशी जैसे लगने लगे, उसकी याद हर पल साथ रहे और उससे दूर रहना मुश्किल महसूस हो, तब उस एहसास को शायद सिर्फ प्यार ही कहा जा सकता है।

क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

0: देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तुमसे अच्छा कौन है फिल्म के इस गीत से। आवाज़ है तौसीफ अख्तर की। समीर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

0: अभी आप उदित नारायण शान और कविता कृष्णमूर्ति का गाया हमराज फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे सुधाकर शर्मा तथा संगीतकार थे हिमेश रेशमिया। श्रोताओं, चित्रपट संगीत कार्यक्रम में कुछ और गाने आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.

चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आप सभी का फिर स्वागत है। अब आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में तैयार कार्यक्रम का अगला गीत है अखियों से गोली मारे फिल्म से। आवाज़ें हैं सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की तथा इस गीत को लिखा है समीर ने।

अभी आप विजय बेनेडिक्ट के स्वर में प्यार का साया फिल्म का गीत सुन रहे थे। समीर के लिखे बोलों को संगीत में ढाला था नदीम श्रवण ने। आइए अब सुनते हैं देव कोहली का लिखा चोर मचाए शोर फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं उदित नारायण और डिंपल वर्मा की तथा इस गीत को संगीत से सजाया है अन्नू मलिक ने।

शोर मचाए शोर फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 में है। लीजिए सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान।

पहले सुनिए रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के दो पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त हैं। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र बल, पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग के समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुका हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वही सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बल, बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम प्रॉपर चैनल से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। और अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।

0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन

गठबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

0: किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
2: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है।

0: विभाग ने अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और FC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में

0: नमस्कार दोस्तों, चर्चा के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, एक दौर था जब बैंकों के बड़े बड़े दरवाजे देखकर आम आदमी हिचकिचाता था, साहूकारों के चंगुल में फंसकर पीढ़ियां कर्जे में डूब जाती थीं। लेकिन आज वक्त बदला है। आज आपकी जेब में रखा मोबाइल ही आपका बैंक खाता बन गया है, या कहें वित्तीय समावेशन का औजार बन गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता हो, रेड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो, या छोटे कारोबार के लिए मुद्रा लोन हो, वित्तीय समावेशन ने आखिरी पायदान पर खड़े आदमी को भी ताकत दी है और उसे सशक्त बनाया है। जब एक महिला को स्वयं सहायता समूह से लोन मिलता है और वो अपनी सिलाई की दुकान या फिर बुटीक खोलती है, तो वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलती बल्कि एक पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। यही तो है असली नागरिक सशक्तिकरण, जब पैसा सीधा आपके खाते में आता है बगैर किसी बिचौलिए के, तो व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे बदलाव की जो देश के आम नागरिक के जीवन को और बेहतर और स्वाभिमानपूर्ण बना रहा है। और आज इसी बदलाव की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी को और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक और विशद अनुभव के धनी रमेश कुमार अरोड़ा जी को। स्टूडियो में आप दोनों ही विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार।
0: और दोस्तों, हम बताएं कि विषय जो है हमारा, बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, नंबर हैं 0112331081 और 23717107 23717106 और 233144444। लेकिन अगर आप दिल्ली

0: के बाहर से फोन कर रहे हैं तो भूलिए नहीं, 01 जरूर डाल कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर की भी सुविधा है जिस पर आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। तो दोस्तों, हम इंतज़ार करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का और बात करेंगे हम अपने विशेषज्ञों से भी। और मैं देख रहा हूँ कि अंशु कुमार जी जुड़ रहे हैं हमसे पटना बिहार से, सुनते हैं उनका सवाल जी। जी अंशु कुमार जी बोलिए।
1: नमस्कार सर।
0: जी जी जी, क्या है आपकी जिज्ञासा? हाँ हाँ, स्वागत।
1: सवाल यही था जो हम लोग को जब भी ब्याज है हम लोग हेलो
0: जी जी
1: हम लोग जब भी ब्याज है तो हम लोग को जो पैसा मिलता है तो बैंक में पैसा निकालने से मिलता है, क्या हम लोग को करना चाहिए? क्या हम लोगों को OTP भी बताना चाहिए? अगर OTP बताएंगे तो क्या क्या हो सकता है? और आधार कार्ड नंबर और खाता संख्या ये सब हम जब बता देंगे तो क्या क्या होगा?
0: बैंक से पैसा निकालने के विषय में इनका ये सवाल है कि OTP नंबर अगर कोई और पूछता है तो संभवतः मैं जितना समझ पाया इन्होंने पूछा है तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या यदि कोई और पूछ रहा है तो क्या वो बताना चाहिए?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई भी बैंक आपसे OTP की जानकारी नहीं मांगेगा, ना आपकी पूरा आधार नंबर की कोई डिटेल मांगेगा। OTP केवल आपका पर्सनल के लिए है। जब भी आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ऑनलाइन निकाल रहे हैं, तो आपको OTP खुद आपको डालना है और उसी से आपका पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। या निकालना है ATM पर जा रहे हैं तो आपको अपना पिन जो है अपने आप कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि किसी को बताना है। किसी को बताएंगे तो फ्रॉड होने के चांस पूरे हैं।
0: जी हाँ, OTP तो दरअसल आपके पास है और उसे यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं तो उसमें बेहद जोखिम है। और जैसा कि आपने बताया, हमें महाप्रबंधक आप रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रमेश कुमार अरोड़ा जी बता रहे थे, तो आप इस सलाह को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, इस पर अमल कीजिए और अपना OTP जो है किसी को बताइए नहीं। और अब मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ शुभमोय भट्टाचार्य जी से, जो आर्थिक विश्लेषक हैं, कि आप हमें बताइए, कृपया हमारे श्रोताओं को और हमें समझाइए कि ये जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दरअसल कैसे इसे समझा जाए कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी?
3: सबसे पहले आकाशवाणी को नमस्कार मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
0: नमस्कार जी।
3: मैं वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी शब्द है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस पर भी हम बहुत सारे शोध पत्र लेख वगैरह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा उदाहरण देता हूं। आज किसी भी भारत के कोने में कोई भी खुदरा दुकान में आप जाइए, सबसे पहले दुकानदार आपको किसी भी चीज के बिक्री के लिए सबसे पहले वो QR कोड सामने पकड़ा देगा। उनको पता भी नहीं है कि QR कोड कैसे चलता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको ये भरोसा है कि ग्राहक जब उनसे कोई सामान खरीदते हैं QR कोड से पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट बिल्कुल कंफर्टेबली उनके पास उनके बैंक खाते में चला जाता है। वो भी अपना जब कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं उसी QR कोड के जरिए UPI में अपना पैसा अपना खाता देख लेते हैं और खाते और खुश होकर अपना जो भी खरीदारी वगैरह है उसका निपटाना करते हैं
0: जी।
3: ये जो चीज हुआ है, लोगों को पूछने की जो जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो मिल गया है उनको, जो जो अधिकार मिल गया है, मैं इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन मानूंगा कि लोग जानते हैं समझते हैं कि बटुए में पैसे रखकर या कहीं पे कुछ भी चीजों का जो पुराने समय का जो और पुराने समय कह रहा हूं मतलब कुछ ही साल पहले का
0: जी जी
3: जो ये अनुभव था वो बिल्कुल लोगों के दिमाग से मानो बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल इरेज हो गया है। मैं इसी को ही वित्तीय समावेशन मानूंगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसके टेक्नोलॉजी हैं और इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम पैसा

0: कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से मिल सकता है, बस हमें एक QR कोड सामने होगा, वो हमारा पूरा सब काम के लिए अवेलेबल है। आज के रुपए का शायद, रुपए का चेहरा शायद बहुत जगह पे लोगों को याद नहीं होगा कि रुपए का सिंबल क्या है, लेकिन QR कोड क्या है ये बच्चा बच्चा तक समझता है। और मैं समझता हूँ ये भारत, भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश का ये सबसे बड़ा और सबसे पुष्ट उदाहरण है।
1: जी शुक्रिया। मैं मुखातिब होता हूं अब अरोड़ा साहब से, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, और उनसे मैं खास तौर पर ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए, देखिए, जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो आपका जो ये वर्षों का अनुभव है वो क्या बताता है कि इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को किस तरह से प्रभावित किया है? तो ये तो है हमारा आपसे सवाल, लेकिन एक और सवाल हमारे पास एक श्रोता का दिखाई दिया था अभी, लेकिन शायद अभी लाइन पर नहीं है। जी हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को, इन योजनाओं ने प्रभावित किया है?
2: जैसा कि अभी भट्टाचार्य जी ने बोला है, वित्तीय समावेशन का केवल ये नहीं है कि हम एक बैंक में खाता खोलें। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंक में अकाउंट हो, उसे हम क्रेडिट सुविधा दें, छोटे जो हमारे लोग हैं या जो भी बैंक में आ रहा है उसको इंश्योरेंस की सुविधा दें, पेंशन की सुविधा दें और डिजिटल पेमेंट कराएं, तो तब हम ये मानेंगे कि हमारा वित्तीय समावेशन, केवल बैंक खाता ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये सारी फैसिलिटी भी हम दें। जहाँ तक बात है कि कितना बेनिफिट हुआ है सब लोगों को इसे वित्तीय समावेशन से, तो सबसे बड़ी बात जो है मिडिल मैन का, इनका निवारण हुआ है। जैसे गवर्नमेंट की कोई एलपीजी की है, फर्टिलाइजर है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये पैसा जो है डायरेक्ट खाते में जमा हो रहा है, मिडिल मैन इसमें से बिल्कुल हट गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गांव में लोग हैं, जो बीच में, उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके खाते में जा रहा है। दूसरा, जो इन्फॉर्मर मनी लैंडर्स हैं उनसे जो 40-50% 60% तक ब्याज पर पैसा उठाते थे, वो जब ये मुद्रा योजना आई, जब ये स्वनिधि योजना आई, इसके थ्रू क्या हुआ कि ये जो हमारे छोटे हैं, गांव में किसान हैं, जो रेड़ी पटली वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, इनको जो है मनी लैंडर के पास ना जाके सीधा बैंकों के साथ जोड़ा गया है वित्तीय समावेशन के थ्रू, तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। साथ में डिजिटल फाइनेंस का, जैसे अभी बात बताया डिजिटल का, यूपीआई के थ्रू सारी पेमेंट आपका यूपीआई के थ्रू हो रही है, तो कैश का ट्रांजेक्शन जो है कम से कम हो गया। और जो रूरल क्रेडिट असेस है वो हमारा बढ़ रहा है वित्तीय समावेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें होने के बाद साथ में हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, पेंशन की सुविधा अटल पेंशन योजना जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और इसी तरीके से हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके थ्रू पेंशन की सुविधा भी मिल रही है, साथ में इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है, और डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, क्रेडिट की सुविधा हमारी मिल रही है, और साथ में बैंक अकाउंट PMJDY के वो भी खुल रहे हैं।
1: जी, तो आपने इन तमाम सुविधाओं की जानकारी दी हमें, जनधन योजना, मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि के अलावा अटल पेंशन की और जो बीमा की भी जो योजना है उनके विषय में आपने चर्चा की। तो आज हम देखें तो UPI और मोबाइल बैंकिंग की वजह से वित्तीय लेन देन तो काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और घोटाले भी काफ़ी बढ़े हैं। तो डिजिटल रूप से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को, क्योंकि प्रायः ऐसी घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, प्रचार माध्यमों से सुनते हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी की जो घटनाएं हैं वो अप्रिय घटनाएं वो देखने में आती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या आपकी सलाह होगी?
2: ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल पेमेंट UPI के थ्रू जो हमारी पेमेंट हुई है इससे हमारा काफ़ी सुविधा हुई है, लेकिन साथ साथ इसके साथ रिस्क भी हुए हैं जिसके लिए हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, OTP आप किसी को शेयर ना करें, कोई अनजान कोई लिंक ना खोलें, ये सबसे

0: जरूरी है, तभी आप इनसे बच सकते हैं। तो साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा आजकल प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल लिटरेट करना बहुत जरूरी है। सभी को बताना पड़ेगा कि हमें जहाँ ये हमें फ़ायदा हो रहा है यूपीआई से, क्योंकि डेली बेसिस पर 60 से 66 करोड़ का पर डे की जो है ट्रांजेक्शन हो रही है रफली।
1: जी जी, जी।
0: और आप पर डे 20 ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, और 1 लाख की मॉनिटरी कैप रखी हुई है, और 5 लाख की कैप रखी है अगर आप हॉस्पिटल को या कहीं टैक्स वगैरह के लिए या स्कूल वगैरह पेमेंट करें। तो जब इतना बड़ा लेन देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साथ में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी है। और हमारे साथ एक श्रोता फिर बिहार सासाराम से जुड़ रहे हैं, अमित उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, क्या सवाल है आपका, कहिए।
2: जी नमस्कार, जितेंद्र विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई कि हमारे जनधन खाता जो है खुले हैं 59 करोड़, ये बहुत अच्छा दिलचस्प है। इसमें भी मैं भी इसमें बीसी मैं भी कॉरेस्पोंडेंस नहीं चलाता हूँ, बीसी हूँ। और मैं मेरा एक सवाल था सर कि जैसे अभी बजट में हम लोग जैसे कि यूपीआई से जो पेमेंट हम लोग करते हैं अभी, तो यूपीआई से जो बढ़ा हुआ है इसमें, इसमें कुछ चार्जेस से कुछ बात हो रही थी कि इसमें घट रहा है या बढ़ा है, इस पर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा प्रकाश डाल देना कि इसमें बढ़ा है या फिर घटा हुआ है। जैसे हम लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर, जितना जिसे हम लोग क्यूआर कोड से जो हम लोग पेमेंट करते हैं, इसका इसमें हम लोग जो महीना मंथली बेसिस पे इसको हम लोग गणना करते हैं, तो उसके हिसाब से इसको कुछ चार्ज करते हैं या टैक्स वगैरह इसको थोड़ा सा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे विशेषज्ञ आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे जी।
0: हाँ, ये जो चल रहा है अब, ये न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, या बात अमित जी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टमर को कोई अलग से पेमेंट नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये अगर एमडीआर के जो चार्ज लग रहे हैं, वो भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए हैं, वो जो जो जैसे दुकानदार वगैरह हैं उनके ऊपर चार्जेस लगने का प्लान है। अभी भी वो हुआ नहीं है फाइनल, इस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये क्लियर कट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, यानी कस्टमर को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई चार्ज नहीं देने पड़ेंगे
1: जी। तो उम्मीद है कि आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल हो गया है। और हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं एम आर चौधरी। कहिए चौधरी साहब, क्या है जी? जी कहिए सवाल।
3: ये मैंने फाइनेंस में भी वहां से सेक्रेटरी को चिट दिया, उसका कोई जवाब नहीं है
1: आपका
3: आम पब्लिक के लिए
1: जी। तो लगता है संपर्क कट गया है। और आपसे हम, खैर, एक और हमारा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हम अक्सर प्रायः लोगों से सुनते हैं, वो ये है कि ऋण लेने के लिए व्यक्ति कहीं पर जाता है तो अक्सर उसका जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर जो है वो बड़ा मायने रखता है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं है कि कैसे एक आम आदमी अपने इस क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है। और ये जो स्कीम्स हैं, खासतौर पर ये जो समावेशन की जो हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन की ये जो योजनाएं हैं, क्या इनमें भी ये स्कोर मायने रखता है? जैसे कि हम कोई फर्ज कीजिए कि वाहन लोन लेने के लिए या मकान बनाने के लिए जाते हैं तो वो देखा जाता है, तो इस विषय में क्या व्यवस्था है?
0: जैसे प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम है, जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसमें कोई भी सिबिल वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई बैंक आपसे सिबिल नहीं मांगेगा। इसमें जैसे फर्स्ट ट्रांच में 15,000 रुपये लोन मिलता है, सेकंड जो है 25,000 है, थर्ड ट्रांच में 50,000 है, तो इसमें कोई भी आपको जो है सिबिल वगैरह की बैंक नहीं मांगेगा, नहीं सिबिल की जरूरत पड़ती। हाँ, मुद्रा योजना में जरूर है कि उसको कोई डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, अगर कोई डिफाल्टर है तो उसमें मुद्रा योजना में अधिकतर हमारा
1: जी बिल्कुल, आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि सिबिल स्कोर की कहां जरूरत है और कहां नहीं। एक सवाल हम ले रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं श्रोता शिमला से, और राकेश जी कहिए आपका क्या प्रश्न है।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हम दृष्टिहीन लोग हैं, हम बैंक नहीं जा सकते, हम अपना जो है बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कृपया करके आप बताइएगा।
1: हम अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस विषय में तो जाहिर है चूंकि बैंकिंग से सीधे तौर पर हमारे विशेषज्ञ जुड़े

0: तो वो आपकी जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे जी।
1: ऐसा है कि बैंक में जो भी आपके साथ दूसरा अकाउंट अगर होल्डर साथ में आपने रखा हुआ है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होती है तो कभी दूसरा साथ में होगा, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। और या आप अपना जो बैंक में जाके जो वहाँ का स्टाफ है उससे भी बैलेंस पता कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे कि आप अपना बैलेंस पता कर सकते हैं।
0: शुभमोय सर, आपसे हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि एआई की क्या भूमिका है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में, इसे एक विस्तार देने में। चूंकि हमने अखबारों में पढ़ा था कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो काफी इस विषय में सक्रिय रहा, तो इस पर कुछ हो सके तो प्रकाश डालिए।
2: बिल्कुल, और सबसे पहले मैं कहूंगा कि एआई, आप अभी सवाल का डिस्कशन कर रहे थे किस हमारे प्रश्नकर्ता से कि सिबिल स्कोर जिसके पास नहीं है उनको कैसे लोन मिल सकता है। तो एआई, भारत सरकार ने एक नया आयाम शुरू किया है, वो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस
0: जी।
2: ये एआई के मॉडल है, डिजिटल फुटप्रिंट, जिससे आम जनता जिनके पास सिबिल स्कोर नहीं है या सिबिल के किसी वजह से वो आए नहीं है, तो उनका जो पेमेंट, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्यूआर कोड से, यूपीआई से वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है उनको, वो देखकर ही एआई एक यूनिफाइड लेंडिंग का सिस्टम समावेशन शुरू किया है। ये बहुत बड़ा आयाम है जिससे हम कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस क्रेडिट अवेलेबल होगा भारत के हर नागरिक को। यानी कि एक वित्तीय समावेशन का ये एक इतना बड़ा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेंडिंग के मामले में ये एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये इतना बड़ा इसका प्रारूप तैयार हुआ है कि जिससे एपीआई बेस्ड फ्रेमवर्क से सबको सारे द लास्ट माइल जिसे हम कहते हैं जो भारतीय है उनको भी क्रेडिट मिलेगा सिबिल के ऊपर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर, उनको निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। तो ये आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एक चीज है जो दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है, इस तरह का कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ है।
0: महत्वपूर्ण जानकारी शुभमोय जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे। चूंकि हमारे साथ एक श्रोता दिल्ली से है लाइन पर, धर्मवीर जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
3: मुनीश जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ, हमारे एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार।
0: जी
3: सर, मैंने पिछले साल 2025 में 29 सितंबर को एक लगभग 30 लाख की पेमेंट एक सरकारी बैंक से मैच्योर हो गई थी, तो मैं अदर बैंक से प्राइवेट बैंक में जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, तो हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया था। पर वो 29 तारीख की बजाय वो हमारे को पेमेंट हमारी 3 या 4 अक्टूबर को वहाँ शो कर रही, तो ये 5 दिन हम परेशान रहे। ऐसे में हम किससे जानकारी लेते, क्योंकि तो वो कहते हैं कि पेमेंट तो आपकी यहाँ निकल गई है। फिर किसी ने बताया कि ये बीच में इसका एक नेटवर्क होता है जो चेक करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं निकाली गई पेमेंट है। ऐसा भी होता है तो अच्छी बात है, पर हम लोग तो आम आदमी तो नहीं समझ पाता कि ये परेशानी हो गई है, तो टेंशन आम आदमी को ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में थोड़ा समझाएं और राय दें, धन्यवाद।
0: जी जरूर जरूर
1: धर्मवीर जी, ऐसा है कि जो भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली पहले बैंक को लिख सकते हैं, और अगर आपकी वहां से बैंक से शिकायत पूरी नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, तो ओम्बड्समैन होते हैं बैंक में, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वहां से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन को भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं और वहां से अपना शिकायत का निराकरण करा सकते हैं।
0: जी, तो उम्मीद है कि धर्मवीर जी आपको आपकी जिज्ञासा का ये समाधान हो गया होगा, और आप इस तरह से संपर्क करेंगे तो आपको अपनी शिकायत के समाधान में सफलता मिलेगी। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, चर्चा का साप्ताहिक मंच है ये हमारा, और आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा। और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा। ये कार्यक्रम

0: हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी टैग #AskAIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। शुभमोय जी, आपसे हम बात कर रहे थे कि AI ने जो भूमिका निभाई है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में से विस्तार देने में, तो उसमें आपने बताया कि किस तरह से जो लैंडिंग सिस्टम है उसमें किस तरह से AI मददगार हुई है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो AI ने संभव कर दिखाई हैं।
1: अभी जो आप प्रश्न ले रहे थे धर्मवीर जी से दिल्ली में
0: जी,
1: और जो सवाल कर रहे थे कि उनके अकाउंट में कोई कार्ड छुपी हुआ है या नहीं, कुछ इधर उधर हुआ है नहीं, इसको इस संभावना को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने MuleHunter.AI करके एक बहुत पावरफुल टूल निकाला है
0: जी।
1: और उस टूल का मुख्य

0: जी से दिल्ली में,
1: जी
0: और जो सवाल कर रहे थे कि उनके अकाउंट में कोई कार छुपी हुआ है या नहीं, कुछ कुछ कुछ इधर उधर हुआ है या नहीं, इसको संगीत संभावना को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने MuleHunter.ai करके एक बहुत पावरफुल टूल निकाला है।
1: जी
0: और उस टूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों में कोई ऐसे अकाउंट्स जो साइबर क्राइम को प्रोत्साहन देने के लिए, साइबर क्राइम को मदद करने के लिए खुले गए हों, किसी तरीके से वो उनको ब्लॉक करना। और ये AI ML पावर टूल ट्रांजैक्शन पैटर्न को, मतलब जो कि उस अकाउंट से जुड़ा हुआ जिस जो भी फंडिंग तो जा रहा है, उसको रियल टाइम में निगरानी करते हैं, उसमें उसमें उसके ऊपर अपना रेड फ्लैग इश्यू करते हैं, जो कि साधारण दृष्टि से एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। बैंकर ट्रेंड होते हुए भी उनके लिए इतना इतना डिटेल्स देखना इम्पॉसिबल रहता है। और इस चीज को कि किसके अकाउंट का पैसा किस वक्त कहाँ से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते वक्त कोई वही म्यूल अकाउंट या दूसरे अकाउंट में पहुंच ना जाए, या उसके थ्रू से कुछ ट्रांजैक्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जो एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के थ्रू से, तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं आयामी चीज संभव
1: जी,
0: होगा,
1: महत्वपूर्ण
0: क्योंकि
1: महत्वपूर्ण ये जानकारी है, बड़ी उपलब्धि है AII के माध्यम से। और हमारे एक और श्रोता सोलापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमसे, प्रकाश राउत। कहिए प्रकाश जी, क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: मेरा यह प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है,
1: जी
2: क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है, पर कोई कारण से वो उसकी जी किस्त बिल होता है जो बाउंस होगा, उसके ज्यादा दंड होते हैं, ज्यादा चार्जेस लगते हैं, उस पर GST बहुत लगता है, इसके रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी होती है, इसके क्या कारण है?
3: प्रकाश जी, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आपको काफ़ी ग्रेस पीरियड मिलता है, तो आपको जो ड्यू डेट है उस तक पूरा पैसा आपको जमा कराना आवश्यक है। अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो आपको बेटर है कि जो भी आप में क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है पेमेंट की, उस डेट तक आप पूरा पूरा पैसा जो है बैंक का जमा कीजिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी देने पड़ सकती है और ब्याज भी आपको देना पड़ेगा।
1: जी, एक और सवाल हमारे पास आया है हमारे श्रोता मनोज पानसे जी का, और आप पूछ रहे हैं कि बैंकिंग में जो डिजिटाइजेशन आया है और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हो रही हैं, उससे उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्रेडिट पाने के लिए किस प्रकार के उपाय और प्रयास हमें करने होंगे, ये इनका सवाल।
3: ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अपने कोई लिंक ना खोलें जो अननोन है, या OTP किसी को शेयर ना करें, लेकिन फिर भी अगर फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए 1930 एक 1930 साइबर हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अभी रिसेंटली ऐसा भी होने जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है आपको बतानी पड़ेगी कि इमीडिएटली क्रेडिट ना होके जाए, उसमें कुछ टाइम लग के आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी कुछ इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके, फ्रॉड से बचाया जा सके, लेकिन सावधानी आपको खुद को रखनी बहुत ज़रूरी है।
1: जी देखिए, अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं इस विषय में, वो ये है कि जैसे स्टार्टअप कोई अगर युवा करना चाहते हैं शुरू, तो शुभमोय जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो वो किन दस्तावेज़ों के साथ तैयार रहें, और बैंक से लोन लेने के लिए जब वो जाते हैं इस तरह के किसी उपक्रम के लिए, तो क्या चीज़ें जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए?
0: ये बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि नए उद्यम लेकर जब हमारे युवा युवा पीढ़ी जब जाते हैं प्रोग्राम अपने अपने अपने स्कीम को साकार करने के लिए, सबसे पहले हालांकि बैंक और में कहा था कि बहुत सारे जैसे मुद्रा स्कीम हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उससे भी पहले अपना जो QR कोड है उसके जरिए उनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड

0: लेकर अगर वो स्टार्टअप इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके तरफ अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सशक्त माध्यम आ गया है जो है यूपीआई। दूसरा, इसी साल आरबीआई और नीति आयोग दोनों ही एक बहुत बड़ा आयाम शुरू किए हैं, वो ये है कि मिशन डिजिटल श्रम सेतु
1: जी जो जी
0: अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है,
1: महत्वपूर्ण है जानकारी। और शुभमोय जी, दरअसल समय की है थोड़ी सी सीमा, बहुत सुंदर आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। आप दोनों विशेषज्ञों का भी धन्यवाद।
2: धन्यवाद
1: दोस्तों। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम हमेशा उनका इंतजार करते हैं, और आप हमें ज़रूर लिखिए AIRNSDtalks@gmail.com पर। और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी।
4: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

आते हैं। संदेश आते हैं कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी इस कार्यक्रम में अपने मनचाहे गीतों को सुनना चाहते हैं तो जल्दी से हमें गीत के बोल, फिल्म का नाम और अपना नाम व पता लिखकर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है सिप्पी घाट श्री विजयपुरम से सुमित, सुमन और सुनील ने। इन दोस्तों की पसंद पर लीजिए सुनिए नया सावन फिल्म का ये गीत।

अब मलाका कन्याकुमार से रोसलिन, भरत, माइकल और क्लेरा की पसंद पर सुनते हैं एक नज़र फिल्म का ये गीत।

अगली फरमाइश आई है रंगत सबरी से, ममता शांति और अजीत का। इनकी फरमाइश पर लीजिए सुनिए हीरो नंबर 1 फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश है कमल बस्ती कैमल बे से राकेश अंकित और संजय का। तो इन दोस्तों की फरमाइश पर लीजिए सुनिए संघर्ष फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, चलते चलते एक बार फिर हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बता दें ताकि आप हमें अपनी फरमाइशें भेज सकें। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। तो दोस्तों, आपकी फरमाइशों का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को विशेष चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समुद्री इलाकों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 2 सितंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:25 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 10वीं तिथि। तदनुसार पहले

सितंबर 2026। इस समय सुबह के 5:28 और 38 सेकेंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कार्य व्यक्ति को अंदर से मजबूत बना देते हैं। यदि आप भी दूसरों की सहायता के इस अद्भुत रहस्य को समझ लेते हैं तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता हासिल न कर पाएं, क्योंकि जो व्यक्ति सभी का भला चाहता है वो न केवल सभी के सम्मान का पात्र बनता है बल्कि उसका भला स्वयं ही हो जाता है।
0: ये था अनमोल विचार। अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।